0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल. अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: सो जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: Maddie, I need to open a savings account.
2: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
6: Small bank?
2: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
6: Okay.
4: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल.
1: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
3: यार लोन भूल गया मैरी.
4: जस्ट अ गुड बैंक ना.
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
6: व्हाट इफ पैकमैन वाजंट ऑन अ स्क्रीन एनीमोर बट रनिंग अराउंड द रूम विद यू? दैट इज द आईडिया बिहाइंड अ न्यू गेमिंग वेन्यू इन लंदन, where classic arcade games are being turned into physical immersive experiences. At Arcade Arena, players can run through a giant Pac-Man maze, race electric carts on a projected track, and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players can take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.

0: the factories producing textiles. It also accounts for roughly 65% of India's man-made fiber textile segment and around 90% of the country's synthetic yarn production. Across this vast ecosystem, an estimated 16 lakh people depend directly or indirectly on textiles for their livelihoods. The real picture of this transformation can be found in one family business. For 45 years, Ravi Sahani has run his shop at Millennium Market. He's accustomed to keeping his records the old-fashioned way, in books. But sitting beside him is his next generation, son Akshay, who has brought in computers, social media and digital business to help modernize the shop.
1: This year, there was a lot of change. And since Narendra Modi ji, 14 to 18 years old, came, we used to check cuts. We used to go to the bank. We एक स्टाफ का टाइम पास होता था, अभी क्या है आरटीजीएस करते हैं, एक हमारा स्टाफ कम हो गया और दूसरा क्या है जीएसटी आई, जब से जीएसटी आई हमारे को पेमेंट की प्रॉब्लम रही नहीं बिल्कुल भी, कि टोटल पेमेंट हमारा पहले क्या था 50 रुपए 100 रुपए हर व्यापारी कम बेचता था, कोरियर चार्ज लेस कर लेता था, आज पूरा का पूरा पैसा अगर 55 रुपीज है तो 55 रुपीज ऊपर लग के आता है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है पहले प्रोडक्शन का, आज के प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा फर्क है। आज किसी व्यापारी को घर में मैरिज भी करनी होती है तो स्पेशल सूरत चल के आता है कि यहाँ शॉपिंग करेंगे, सस्ती मिलेगी। पहले हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, हम आज ट्रेडर्स हैं, आज हम लोग घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
0: टू जनरेशंस वन बिजनेस एंड द कॉन्ट्रास्ट इज स्ट्राइकिंग। फॉर रवि द लेजर रिमेन्स पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, फॉर अक्षय द कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन आर इक्वली इम्पोर्टेंट। The shift is not just from paper to digital. It is a shift in the way a traditional textile business finds customers, takes orders, and competes in the industry.
2: We have to change a lot of things over the years because my dad started this business 45 years ago. And now I have been in this business for the last 15 years. So 15 years mein jo with time, jo generations itni fast hai, jo markets itne competitive hote ja rahe hain, agar hum apne aap ko change nahi karenge, so there are around 1 lakh shops in Surat. This is Millennium Market, yahan pe 4200 shops hai. Agar humko yahan pe hum changes nahi layenge, to hum survive nahi kar payenge. Changes in sense, aaj सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी बिजनेसेस हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आपके एजेंसी से इसको टाई अप नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं है, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years आई डोंट थिंक आपका बिजनेस सर्वाइव भी कर पाएगा।
0: द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड ऑन द फैक्ट्री फ्लोर वेयर द टेक्सटाइल जर्नी एक्चुअली बिगिंस। एट दिस पावर लूम यूनिट वीविंग इज नो लॉन्गर एज लेबर इंटेंसिव एज इट वंस यूज्ड टू बी। Machines have replaced human hands.
3: Changes में तो लेबर में चेंजेस बहुत आए। पहले लेबर 4-5 मशीन हैंडल करते थे, अभी 14 मशीन एक साथ में हैंडल करते हैं। अभी क्या है, लेबर ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन को प्रीफर करते हैं, इसलिए अभी लेबर का शिफ्टिंग ऑटोमेटिक मशीन के थोड़ा ज्यादा हुआ है सर। क्वालिटी में अभी क्या है, लोग अभी ज्यादा प्रीमियम कपड़े ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन अभी इसके लिए उसके हिसाब से क्वालिटी कपड़ा अपने जो उसको क्वालिटी बोलते हैं उसमें सुधार लाना पड़ता है, तो उससे अपना प्रोडक्शन भी ज्यादा लगता है, तो लोग अभी ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन के दौर प्रीफर करते हैं।
0: टेक्नोलॉजी हैज बिकम सेंट्रल टू सूरत्स टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन। द चेंज इज विजिबल इन प्रोडक्टिविटी टू। मशीन्स दैट वंस रिक्वायर्ड सेवरल वर्कर्स टू ऑपरेट आर इंक्रीजिंगली बीइंग हैंडल्ड बाय फ्यूअर मोर स्किल्ड ऑपरेटर्स।
4: जो लूम्स थे वो कहीं ना कहीं अपनी एक उम्र को खो रहे थे, उसके बाद में युवा पीढ़ी का यहां पर आना हुआ, इस बिजनेस को संभालना हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते खुले, सरकार का सपोर्ट मिला, कई चीजों की सब्सिडी और फाइनेंस को इजी किया, तो उसके बाद में जो बाहर से इटली जर्मनी चाइना यहां से जितना भी जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई, तो एक रफ्तार उसने सूरत के कपड़े ने उन मशीनों के जरिए पहुंचाई है। और उसमें सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो पुराने ख्यालात से सूरत में बना है और नया जोश दोनों साथ में जुड़ा, तो होश और जोश से नई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। आज उसके अंदर रेपियर जेगार्ड, एयर जेट, वाटर जेट, डिजिटल प्रिंटिंग, इसके अलावा भी जैसे पॉलिस्टर बेस पर जो काम होता था उसके अलावा यहां पर विस्कोस का काम होने लगा, इसके अलावा नायलोन का काम होने लगा, बेम्बर का काम होने लगा, तो ये सब चीजें जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के दरवाजे खुले, तो एक रफ्तार और उसके अंदर एड ऑन हुई है। तो ऑटोमेटिक मशीनों से कहीं ना कहीं सूरत ने

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
1: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
2: ब्रांच नेटवर्क बिग.
1: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस में स्मॉल।
1: अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: यार लोन भूल गया मैडी।
4: जस्ट अ गुड बैंक ना।
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: व्हाट इफ पैकमैन वाजंट ऑन अ स्क्रीन एनीमोर बट रनिंग अराउंड द रूम विद यू? दैट इज द आईडिया बिहाइंड अ न्यू गेमिंग वेन्यू इन लंदन, where classic arcade games are being turned into physical immersive experiences. At Arcade Arena, players can run through a giant Pac-Man maze, race electric carts on a projected track, and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.

की पुलिस पब्लिक पार्क में पब्लिक प्लेसेस में और रिसोर्ट की पुलिस करते हैं।

0: से ट्राई करो, टमाटर वाला अच्छा।
1: टमाटर खाइए, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे देश में कहीं नहीं मिलने वाला है।
0: All right then, I will definitely try the tomato chaat. It looks delicious.

0: The soap is stabilized in 1927 from my grandfather time till at the moment. We are the third generation. And from that time till at the moment, we are continuously selling here the lassis. And you can get more than 100 varieties of the lassis, which is you can't get anywhere in whole of the world, not only
1: in
0: India.
1: Yeah. That's a strong statement. That's great.
0: And that was such a very huge, you can see the menu of ours.
1: Sure. Okay. 100 varieties, you said?
0: Yes, it is.
1: Wow, that's a thick, thick manual.
0: Wow. And you can see all of those.
1: Right. Oh, wow. You name it. Apple lassi has about 10 flavors. Banana section has another 10. Pomegranate has another 10. So clearly, that makes up to 100 flavors very easily.
0: The lassi is from the yogurt, sugar and milk. And these three are our main ingredients in our lassi. And depend on the customer what they would like to pray for with the lassi.
1: Right.
0: We include with our lassi and we give them.
1: Oh, so you can customize your lassi?
0: Yes, it is.
1: I'm super excited to try the all mix fruits lassi. Wow, so good. It's got banana, it's got pomegranate, apple, pineapple, you can taste everything. सबसे ज्यादा कस्टमर साल में कब आते हैं, कौन से महीने में?
2: दिवाली, देव दिवाली, होली, ये सब विदेशी एकदम बाहर से लेके अंदर तक भरे रहते हैं. आप आएंगी तो लस्सी हम एक घंटे बाद देंगे.
1: हाँ, एक घंटे का वेटिंग पीरियड होता है. अरे वाह.
3: इट इज फेमस नॉट ओनली इन बनारस ओनली, नॉट इन इंडिया, इट्स फेमस इन वर्ल्ड वाइड. एंड आई लिटरली प्रेफर एवरीवन हु कम टू बनारस, वंस यू शुड विजिट ब्लू लस्सी.
4: A hot cup of chai served along the ghats defines the soulful tea culture of Banaras. But if you want to have white butter toast with tea, this is your go-to place.
5: 1958 में स्थापित हुआ है, लक्ष्मी चाय वाले स्टार्ट किए हैं. बाकी तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग तो अभी चौथी पीढ़ी चल रही है. व्हाइट बटर और सीजेरियन मलाई तो फेमस है. और इलायची वाली चाय हमारी स्पेशल एकदम फेमस है.
1: थैंक यू. आई एम ट्राइंग द फेमस व्हाइट बटर टोस्ट एट लक्ष्मी चाय वाला विद द चाय. थैंक यू सो मच.
5: चाय
1: असली चाय
5: ये लीजिए, स्पेशल चाय इलायची वाली.
1: थैंक यू सो मच.
5: थैंक यू.
1: इलायची चाय विद व्हाइट बटर टोस्ट. ऑल्दो लक्ष्मी चाय वाला इज नोन फॉर इट्स मलाई टोस्ट, बट यू आर लिटिल लेट इन कमिंग टू द स्टोर, दैट्स ऑलरेडी ओवर. आई एम एक्साइटेड अबाउट द व्हाइट बटर टोस्ट विद इलायची चाय.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल
1: वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल.
1: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. Ujjivan, nothing small about us.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
3: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.